0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

ताजिक सभ्यता इतिहास और संस्कृति बहुत प्राचीन और संपन्न है। ताजिक लोगों के लोक कला, संगीत और परंपराएं विदेशियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमने कई हिंदुस्तानी कलाकारों से बात की थी जिन्होंने ताजिक संगीत में सफल हुए हैं। इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दी थी रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर। आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

ताजिक सभ्यता इतिहास और संस्कृति बहुत प्राचीन और संपन्न है। ताजिक लोगों के लोक कला, संगीत और परंपराएं विदेशियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमने कई हिंदुस्तानी कलाकारों से बात की थी जिन्होंने ताजिक संगीत में सफल हुए हैं। इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: से वराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्टी हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्टी को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज़ प्रोग्राम, यूथ डे, वुमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस मेन एक है गाना आला। यह एक प्रागा ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ये अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। एक गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे जारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पात आपके लिए पेश करता है।